अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

उजान रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

वहां का जर्रा जर्रा अपनी हालत पर सलामत है। तुम्हारे एक न होने से वहां लेकिन कयामत है।

खुशी के साथ गमी है, पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम और आलमेर से लड़कन का यादर और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 80 साल के आयु में तख्तख यार औत लड़कन रविन और विजय गयाधर की माँ रोशिता गयाधर पंचू की सास प्रीति गयाधर और रैना गयाधर के आजी रीनिया हरिद्वार और राजेश बोंदालापीडिया के बहन अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प की रहने वाली श्रीमती मारी उर्सिला जवाहिर की मृत्यु हो गई है 80 साल की आयु में तख्तख्यार। और स्वर्गीय श्री हरि जवाहिर और स्वर्गीय नेल बोंदालापीडिया के बेटी जो थी अम्स्टर्डम और आलमेर से लड़कन गयाधर और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शुक्रवार को 80 साल की आयु में तख्तख्यार औत रवीन और विजय गयाधर की माँ रोशिता गयाधर पंचू की सास प्रीति गयाधर और रैना गयाधर के आजी रीनिया हरिद्वार और राजेश बोंदालापीडिया के बहन अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प की रहने वाली श्रीमती मारी उर्सिला जवाहिर की मृत्यु अम्स्टर्डम के ओंजली फ्रावखास्टहाउस ओस्ट में हो गई है, जो कि स्वर्गीय श्री हरि जवाहिर और स्वर्गीय श्री नेल बोंदालापीडिया की बेटी थी और जीवित में सूरीनाम और नीदरलैंड में ऑंडरवाइजरेस भी थी। अर्थी से विदाई लेने के मौका है कल सोमवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक एटफार्ड सेंट्रम वेस्खार्ड के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के दिन में 2 बजे वोंसदाग आंस्टांड 2 uur किए जाएंगे। क्रीमाटोरियम वेस्खार्ड ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फुरजोरखिंग परिवार गयाधर और परिवार जवाहिर के दुख में शामिल है।

मौसम कहता है स्वागतम। लता जी के साथ किशोर कुमार से गीत आप सुने, फिल्म तोहफा से निकाला हुआ। और ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे मोहम्मद रफी साहब।

कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी का दिल वाला। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आप गीत को सुने और फिल्म माया से निकाला हुआ। एनु मुकेश जी, फिल्म मिलन का गीत।

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: उजाला रेडियो का प्रोग्राम है ये सुनने वालों, आप ही के लिए।

ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे, उन दिनों की बात है। तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का नाम और गाने वाले सोनू निगम एंड सरिका कपूर, इन दोनों से प्रोग्राम में गीत को आप सुने उजाला रेडियो। एक बार फिर सोनू निगम, इस बार सुनिधि चौहान के साथ।

सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान, इन दोनों से आप सुने कि जब से मेरे दिल को हुए उफ। फिल्म का नाम तेरी मेरी कहानी और स्टेशन उजाला रेडियो।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

सुन वालों, ये उजाला रेडियो है और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम नहमा सुनाने को जा रहे हैं आंस्टांडे ज़ादा दिन एंड जोंदख 30 अगस्त को जबरदस्त हंगामेदार फेस्टिवल होने वाला है ब्राज़ा फेस्ट इंडोर समर एडिशन इंडोर हाथू मोह से सुन रहे हैं भीतर जिया इवेंट सेंटर दिनाख में आप सुनने को जा रहे हैं नहमा इस बार प्रोग्राम में ला रहे हैं अफीशा की आवाज़ में ओक अवेजक और ब्राज़ा फेस्ट

0: फुआ फुफा बहन और ए भाई तो भी सुने हैं तो उजाला रेडियो।
1: ये है उजाला रेडियो, रात और दिन सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

0: Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl।

Aad je het waar? Nou, Tarik Agaska Pregam, zondag 9 augustus. Aap sabhi ko mera pyar bhara namaskar, ram ram, namaste aur adab. करीबन 9 मिनट बैठे सचिकल है 3:09 इतवार का शाम का प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां जन्मदिन सालगिरह विवाह शादी हो आप एक हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं जो कोई बीमार या तो लाचार है तो तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना अल्लाह से दुआ है आप की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए बैठक गाना का प्रोग्राम में अगर आप लोग हिस्सा लेना चाहेंगे तो उजाला रेडियो का व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9203 पर आप लोग मुझे ऐप कर सके हैं 9203 पर मैं हूं सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंची वहां तक हम आप सभी को शाम का प्रोग्राम में वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम में स्वागत कर रहा हूं वेलकम खुद में दखल माओ वेल मौसम के बारे में बता दे हते स्वरम गरम बा तो चलिए पहला बैठक गाना का प्रोग्राम जो आप लोग सुनेंगे पहला बैठक गाना तो स्वर्गीय रामदेव चैतू जी

0: जय जय कैलाश पति। और इस तरह से गाना जी प्रोग्राम में आप लोग सुने स्वर्गीय रामदेव चैतु जी। एंड वैसे इसका प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा में अब की बार चलिए तो देखा जाए अमसलम सही तो उसमें श्रीमान रोबी रोजन प्रोग्राम को बैठ कर सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम
1: फुलों की बहार आई फुला

शाबाश शाबाश। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने द्रौपदी जी के आवाज में, और अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो एक बार फिर द्रौपदी प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली है, और इस गाना को मांग करने वाली है देखा जाए आमेरे में, और वो भी खास करके माला मुंगार। और चलिए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे एक बार फिर द्रौपदी जी के आवाज में गाना जो आप लोग सुनेंगे।

शाबाश शाबाश। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने द्रौपदी जी के आवाज में, एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो खास करके रविंदर भोला सिंह जी के आवाज में एंड बेल्कि में सुनीता भी प्रोग्राम को सुने तो ये गाना तुम्हारे नाम यबल आई बॉय चलन दे यू आर उजाला रेडियो वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम।

आई बोई चलन दे एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम रविंदर भोला सिंह के बाद उसमें गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुनी एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो मोती माला भोला सिंह

शाबाश शाबाश यार, मतलब का इंसान। इस तरह से मोतीमाला भोला सिंह जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। एंड अब की बार हार्लम में सीता भी प्रोग्राम को बैठ सुने। तो सीता चलिए, ये नाम तुम्हारे नाम, द किंग ऑफ बैठक गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी। अरे भैया हमार मसनिया

अरे बाप रे, हमार मसनिया ना जाने का करी सही गा। वेल, हमार मसनिया बोले हमें साउथ तो खवावे। हमार मसनिया आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जहां आप लोग सुन रहे वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखे जय और मेरे में श्रीमान मनोज मुंगार भी प्रोग्राम को बैठे सुन रहे थे गाना।

0: रो और बोले मेरे प्यार को तो ना भुला दोगे, और इस तरह से किंग ऑफ बैठ गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड चलिए इस बार एक और ऐसा ही गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे।
1: चल रे सजनी तो है कोड़ा की
0: और देखिए मीला भी प्रोग्राम

शाबाश शाबाश पंडित रामचंद्र पंत सिधर जी के बाद उसमें गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और देखा जाए तो करीबन एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए फैंस पोल्डर में मिला कट्टू सिंह भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं तो इस गाना को मांग किया है और द किंग ऑफ बैट गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवास में

और जो गाना फरमाइश के है ना तिलक, वही गाना हम आपको सुनाते हैं। और ना तिलक हमें सूते ना देवे, वेल या वेल आई बोई। एंड चलिए गाना की ओर, जो गाना आप फरमाइश के है, बोले हमें सूते ना देवे आई बोई।

बोई आई बोई हमें रात भर बोले सूते ना देवे। आयुष तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड वो भी बैट गाना का द किंग ऑफ बैट गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवास में। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुने वालो और करीबन 5 बजे तक आप लोग सुनेंगे। और चलिए गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग के लिए लाते हैं एंड अब की बार एक और खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं। और अब की बार देखा जाए

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे, इतवार का शाम का प्रोग्राम, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम, बैठ गाना हंगामा। वेल ई गर्मिया में ना खाए तू बनाई सके, तू ना घर के काम कर सके, तू ना कपड़ा तरीकी कर सके। वेल खुमोई से पानी पिए जाओ, वेल ड्रिंक टू फ्रॉल वाटर। अगर आप लोग पकाओ तो ये तमोई से पकाइए गर्मिया में। अगर आप लोग बैठकर भोजन करते होंगे तो स्वादी से भोजन कीजिए। और जो तू घर वा काम करत हुई तो मोई से करिए हमारे साथ। या वेल तो चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, तो इस गाना को मांग करने वाला है कपाला एंड आइसल में भैया देखा जय ग्लैन गांपद गाना को मांग के है। तो चलिए आपके लिए गाना घुमाते हैं स्वर्गीय श्री पंडित अवध बिहारी जी।

शाबाश और इस तरह से स्वर्गीय श्री पंडित अवध बिहारी जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो लैस फेन शहर में सानू जी भी प्रोग्राम को बैठकर सुने, तो ये गाना तुम्हारे नाम।

ऑफ शाबाश शाबाश बोले दिल दिल से मिला कर देखो तो फिर मोहब्बत होती है क्या। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी, और इन्हीं के आवाज में एक और गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, इस गाना को मांग करने वाले होरन शहर में माला भी प्रोग्राम को मिला भी प्रोग्राम को बैठ सुने तो मिला होरन

खिड़की खोली रही सारी रतिया एंड बोले रतिया कहा गवायो ना, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। पियानो शहर में देखा जाए श्रीमान राम सुख भी प्रोग्राम को बड़ी सुने तो ये गाना

0: और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग को सुनाने वाले हैं, और अब की बार गाना जो है तो इस तरह से ये गीत हम आप लोग को सुनाने वाले हैं, और आशा है कि आप सभी को ये गाना भी पसंद आएगा। और इस गाना को पसंद करने वाले हैं सुतमेर शहर में, जहां पर इस वक्त सांता प्रोग्राम को बैठकर सुने, तो ये गाना हम कोशिश करते हैं सुनाने को।
1: Pull up that song, pull up that song there. Mad in a dog.

ये बैठक गाना ना है, ये बैठक गाना हम ना सुना चुकेंगे यार, बैठक गाना होना चाहिए। और चलिए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखिए बरेडा शहर में जहां पर इस वक्त श्रीमान श्रीमती बिहारी प्रोग्राम को बैठ सुने तो

इस तरह से किशोर एंड फ्रेंड्स के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो है एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो खास करके देखा जाए सुतमीर में और वो भी संता के लिए गाना पेश है और गाने वाले होंगे हनीफ रोजन जी के आवाज में गाना जो आप सुनिए

0: शाबाश शाबाश। इस तरह से साहेब हनीफ रोजन जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा। एंड अब की बार देखा जाए अमसरम, उसमें हमारे समधी भाई जी परिवार सौदागर प्रोग्राम को बैठकर सुने, तो ये गाना आप लोग के नाम।
1: चमुना के तीर, आज चमुना के तीर।

0: शाबाश शाबाश मुरलिया बाजे जमुना के तीर। और इस तरह से साहब हनीफ रोजन जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो, 10 मिनट बाकी रहा 5 बजने में। और चलिए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और की बार देखा जाए
1: मौसी रसोई हलवा मौसी।

0: इस तरह से फ्रांसिसे रामनाथ के अवांश में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो का वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा। और देखा जाए दरहा से फिल्म शहर में जहां पर इस वक्त श्रीमान लक्ष्मण जी प्रोग्राम को सुने हैं, तो ये गाना तुम्हारे नाम
1: एक

और हमारे प्यारे सुनने वालों, देखा जाए घड़ी तरफ तो करीबन 3 मिनट बाकी रहा 5 बजने में, तो इसका मतलब यह हुआ कि आज का बैठक गाना का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होने पर आई है। यही आशा करता हूं कि जिस तरह से प्रोग्राम को हमने बनाए सजाए आप सभी सुनने वालों को पसंद आए हुए होंगे। हमारा साथ देने के लिए, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए, बैठक गाना हंगामा सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद एंड शुक्रिया। आने वाले दिनों में फिर हम आप लोग से मिलेंगे। अपना इतवार का शाम और रात्रि तो लोग मोई से बिताइए, मोई से खाइए, मोई से पिए, मोई से रहिए। जो भी करना है आज कर लेना, कल के बाद आना कर, कल तू ना देख लेना हम देख ली।

यहीं पर हम छोड़ के जा रहे हैं, यहीं पर फिर हम आप लोगों से मिलेंगे। आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज। खिदमत की आपका दोस्त सुभाष, शिव गोविंद, मोइश रहिए।

सुन वालों, ये उजाला रेडियो है और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम नहमा सुनाने को जा रहे हैं आंस्टांड ज़ादा दख 29 एंड ज़ोंडख 30 अगस्त को जबरदस्त हंगामेदार फेस्टिवल होने वाला है ब्राज़ा फेस्ट इंडोर समर एडिशन इंडोर हाँ तू मोइस सुन है भीतर जिया इवेंट सेंटर देन हाग में आप सुनने को जा रहे हैं नहमा इस बार प्रोग्राम में हम ला रहे हैं अफीशा की आवाज़ में ओक अवेजक और ब्राज़ा फेस्ट

उजाला रेडियो का प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं। सुनने वालों, इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा आप देखें वेबसाइट पर www.ujala.nl। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए भी ताड़ आप कर सकते हैं दफ्तर के समय तहदिन कांतोर उरन 020 409

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम और आलमेर से लड़कन का यादर और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 80 साल के आयु में तख्तख यार औत लड़कन रविन और विजय गयाधर की माँ रोशिता गयाधर पंचू की सास प्रीति गयाधर और रैना गयाधर के आजी रीनिया हरिद्वार और राजेश बोंदालापीडिया के बहन अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प की रहने वाली श्रीमती मारी उर्सिला जवाहिर की मृत्यु हो गई है 80 साल की आयु में तख्तख्यार। और स्वर्गीय श्री हरी जवाहिर और स्वर्गीय नेल बोंदालापीडिया के बेटी जो थी अम्स्टर्डम और आलमेर से लड़कन गयाधर और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शुक्रवार को 80 साल की आयु में तख्तख्यार औत रवीन और विजय गयाधर की माँ रोशिता गयाधर पंचू की सास प्रीति गयाधर और रैना गयाधर के आजी रीनिया हरिद्वार और राजेश बोंदालापीडिया के बहन अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प की रहने वाली श्रीमती मारी उर्सिला जवाहिर की मृत्यु अम्स्टर्डम के ओंजली फ्रावखास्टहाउस ओस्ट में हो गई है, जो कि स्वर्गीय श्री हरी जवाहिर और स्वर्गीय श्री नेल बोंदालापीडिया की बेटी थी और जीवित में सूरीनाम और नीदरलैंड में ऑंडरवाइजरेस भी थी। अर्थी से विदाई लेने के मौका है कल सोमवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक एटफार्ड सेंट्रम वेस्खार्ड के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के दिन में 2 बजे वोंसदाग आंस्टांड 2 यूर किए जाएंगे। क्रीमाटोरियम वेस्खार्ड ओक मेरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फुरजोरखिंग परिवार गयाधर और परिवार जवाहिर के दुख में शामिल है।

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर
0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Jalinde.

में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता।

0: हजार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहीद गुलजार। आप सुन रहे हैं यू आर उजाला रेडियो का पैगाम। एक घंटे के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में हाजिर हूँ लेकर कुछ मिले जुले संगीत। ऐसे में सबसे पहला सिलेक्शन इस एक घंटे का पैगाम में फिल्म का नाम है सांड की आंख। इसी फिल्म का सिलेक्शन आप सभी सुनने वालों की खिदमत में अर्ज है। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, बीमार, दुखित या तो लाचार है, आपकी खुशी के वास्ते भगवान से प्रार्थना और अल्लाह से दुआ है। यू आर के फोन का नंबर एडमिनिस्ट्रेशन पर है। सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक 020 एम्स्टरडम शहर में 020-409-0807 रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम और काज के वास्ते। हमारे सभी श्रोताओं को एक शुभ दिन के साथ सबसे पहला सिलेक्शन इस एक घंटे का कार्यक्रम में। फिल्म का नाम है ढाल। सन 1957 का फिल्म, 1997 का फिल्म ढाल से हाजिल मजा है।

0: अजी तुम्हारा तो सदियों से इंतजार था, हासिल मजा है। फिल्म का नाम ढाल, स्टेशन है यू आर, तू जाने है तो।
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

स्टेशन है यू आर उजाला रेडियो का पैगाम। कुछ मिले जुले संगीत मिक्स मैक सॉन्ग्स आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं खैर मकदम के साथ। आपका खादिम शहीद गुलजार की तरफ से आप हर एक को एक बहुत ही शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज है। इस बार प्रोग्राम में राहत फतेह अली खां की आवाज़।

हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश और द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया आशा भोसले की आवाज में आपने भी सुने के नतीजा हमारी मोहब्बत का ये क्या है, ये तुम भी ना सोचो, ये हम भी ना सोचे। स्टेशन है यू आर उजाला रेडियो, फोन का नंबर एडमिनिस्ट्रेशन पर है 020-409-0807। ए जानेमन, तुम साथ हो

0: Ujala Radio, always the first. Luister naar de latest songs op Ujala Radio.
1: मिले जुले संगीत में इस बार हम आपको सोच रहा हूं कि इस बार आपको सुनाने वाला हूं द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर.

What a fabulous voice. The Nightingale of India, लता मंगेशकर की आवाज में आपने भी सुने हैं, जिंदगी के रास्ते में हम साथ होंगे। You are उजाला रेडियो, जनता की आवाज, आप ही की आवाज। आप प्रोग्राम को सुनते रहना और सुनते ही जाना।

वापस फिल्म का नाम है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर और सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, के एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। आज मैंने राशि पर नंबर नोट कर लेना, आज नहीं तो कल के वास्ते जरूर काम आएगा। 02-409-0807 रेडियो के क्षेत्र पर हर काम काज के वास्ते इश्तहार, जरूरी खबरें, मौत की खबर, मृत्यु समाचार या जो भी कार्य के वास्ते 02-409-0807 इट्स यू आर ए तू जाने है तो गाना सुनना।

हम आपसे क्या बताएं, मन चाहे लड़की, मेरा भी इरादा है कि इस साल मेरी शादी हो जाए, कोई है? The rocking and most sensational you are के जरिए आपने भी सुने हैं The Melody Queen of India आशा भोसले और हसीनों के पुजारी किशोर दा की आवाज। कुछ मिले जुले संगीत मिक्स मैक्स सॉन्ग्स आपके खिदमत में अर्ज किए जा रहे हैं। एक बार फिर से प्रोग्राम में किशोर दा और आशा ताई की आवाज़।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन उजाला.net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

उजाला रेडियो है और सुनने वालों एसी के साथ आरंभ किया जा रहा है एक और प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। इस प्रोग्राम में गीतों और गजलें हम आपको सुनाते हैं और बातें कम करते हैं इसलिए ताकि आप इत्मीनान से बैठ करके और इस प्रोग्राम से लुफ्त उठा सके। तो चलिए आज पहली गजल जो है पंकज उधास की आवाज में पेश है।

ही दुखाने के लिए आ मेहदी हसन की आवाज में सुंदर गजल को आप सुने। उजाला रेडियो पर प्रोग्राम का नाम है गीत और गजल की दुनिया।

से मोहब्बत है तो है, गुलाम अली की आवाज में आप गजल को सुने। और एक बार फिर मेहदी हसन प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा है।

दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। मेहदी हसन की आवाज़ प्रोग्राम गीत और गज़ल की दुनिया उजाला रेडियो पर, और मेहदी हसन साहब एक बार फिर अब प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा है। पेश है

है कभी एक नजर शाम के बाद मेहदी हसन की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो है ये, और सुनने वालों गीत और गजल की दुनिया प्रोग्राम जारी है।

मलिका पोखरा जी की आवाज में आप भी एक गजल आज प्रोग्राम में सुने। उजाला रेडियो है ये सुनने वालों, गीत और गजल की दुनिया में गुलाम अली दोबारा हिस्सा ले रहा है।

बिखरती जाती है गुलाम अली की आवाज में आप सुने। और अब एक गजल आप सुनेंगे पंकज उधास जी की आवाज में, और ये होंगे आज के गीत और गजल की दुनिया में आखिरी गीत।

उजाला रेडियो है ये सुनने वालों, और इस चून के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। गीतों और गजलें के साथ, और आपको तो पता ही है कि इस प्रोग्राम में बातें हम कम करते हैं ताकि इत्मीनान से प्रोग्राम को आप सुने और भी लुफ्त उठा सके। तो चलिए हम ला रहे हैं पहली गजल आज का प्रोग्राम में, अनूप जलोता जी की आवाज में।

कटेगी ये अब जिंदगी रोते रोते, ये कह कर गई है खुशी रोते रोते। अनूप जलोटा जी की आवाज में अब सुने आप सुने, और अब मेहदी हसन हिस्सा ले रहा है प्रोग्राम में।

मेहदी हसन, मेहदी हसन की आवाज़ में लाइव रिकॉर्डिंग आप सुने और ये उजाला रेडियो है, प्रोग्राम गीत और गज़ल की दुनिया पेश है।

मेरा आशियाना, तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये वादा करो कि तुम मुझे याद ना आना। भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में आप सुनें।

धूप में निकलो और घटावों में नहा कर देखो, जगजीत सिंह की आवाज में आप इस गजल को सुने। और ये उजाला रेडियो है और प्रोग्राम का नाम है गीत और गजल की दुनिया।

खेलने के वास्ते अब दिल किसी का चाहिए और कफन के लिए तुम्हारा आंचल चाहिए। चंदन दास की आवाज में आप सुनें।

यार तेरे प्यार की कलियां चूम लूं, लौट कर फिर तेरी गुलशन में नहीं आऊंगा। अनूप जलोटा जी की आवाज में आप गजल को सुने, और सुनने वालों घड़ी की तरफ ध्यान रखते हुए हम आपको अब ये बता सकते हैं कि इस प्रोग्राम में एक आखिरी गजल आप सुनेंगे, और इसके लिए एक बार फिर प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे मेहदी हसन साहब।